आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, अनदर चांस, अनदर ऑपर्चुनिटी टू डू सत्संगत साध संगत, एन ऑपर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, टू लिसन एंड टू इम्प्लीमेंट. सो इन टुडेज़ दिवान वी गोइंग टू फोकस ऑन सिमरन, a focus practice for the mind, a practice that can eliminate thoughts of negativity, anxiety, depression.

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दुख जन्म मरण पग खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राह गौरी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हर लागा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारी रहाओ ते संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस अकात कथा दिन जानी जाको आए सोई बेहाजो हर गुर के मने बसीरा निज घर महल पावो सुख सहजी

के सर्वत्र देशै के सर्वत्र पेशै के सर्वत्र कालै के सर्वत्र पालै के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र सोखै के।